0: used to pump underground salt water. For these families, replacing them will be impossible without taking on more debt.
1: अब ये नमक बंद हो जाएगा, क्योंकि ये पानी खाड़ा में 30-35 से पानी निकालता है. अभी तो ये सोलर है, पानी कहाँ से निकाले?
0: Kishan says the storm has left him and his family devastated.
2: बच्चे तो रो रहे थे रात को, ना हमारे पास कुछ सुबह में चाय पीने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि डब्बा डुबली सब उड़ गया था हमारा. हमारे पास कुछ भी नहीं बचा नहीं है, खाने के लिए रोटी भी नहीं बची है. इसलिए हम क्या कर सकते हैं? और सरकार से यही अपेक्षा है हमारी कि पूरे के पूरे जो आगरिया विस्तार है उनको सहाय मिलनी चाहिए, ताकि पूरे के पूरे घर बर्बाद हो गए, किसी के पास कुछ नहीं बचा है.
0: Activists are asking the salt workers to document their losses so they can inform the authorities.
3: Now, historically, this is a community that has not received a lot of help from the Indian government. We're going to track over the next few months whether that changes and to try and understand why this community that produces an essential commodity is so marginalized.
0: The Gujarat government says it provides welfare services to the community, including mobile health vans, often the only medical care available to families living deep inside the desert. Today, we've been given access to ride with one of them.
4: Hello, sir. How are you?
0: But there's a change of plans. Instead of traveling to storm-affected Agaria settlements, they are being diverted to a temple event elsewhere in the desert.
5: ये जो बाकी गाड़ी है ना जिंजुवाड़ा, वो भी एक रानी है. हाँ. वो थोड़ा अभी डिसफंक्शनल है, इसलिए हमारी गाड़ी उधर पोस्ट हुई.
4: तो आप जिन फैमिलीज को सर्व करते हो अगर या फैमिलीज को, अब उनको मदद नहीं मिलेगी आपसे?
5: वो मैम, वो क्या होता है, वो पीएचसी तक जा सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहना ऊपर से.
0: द स्टाफ टेल अस डाइवर्जंस लाइक दिस आर कॉमन.
6: मैं आपको बताता हूँ, एक दो महीने में 10-15 ऑर्डर है हमारे एक ही वाहन के. ये वैन है अगरियाओं के लिए, तो खाली नाम अगरियाओं के लिए. इसको किसी भी किसी एमएलए का फंक्शन हुआ, किसी का भी गवर्नमेंट ने किसी ये ध्वज वंदन होता है राष्ट्रीय मतलब कुछ भी हो, इसमें उसका ऑर्डर कर देते हैं. जो इसके लिए है उसको लाभ कुछ नहीं है.
0: The Gujarat government says it has assigned 12 mobile health units to serve agarias through the salt season. As we cross the desert, a salt worker flags down the van asking for help. But just as the doctor gets out to assist, he receives an urgent phone call.
5: Rathod charo mati main kidu tu hello peche ma jo ke ne bacche hame patient jota tha ne hum record karu kitlo upar rasta ma ache wo rok rahe the par ab hum upar se phone aaya ki aapko udhar pahunchna hi padega main fatafat chala do ab kya rokta nahi fatafat chala do.
0: When we arrive at the temple, only a small number of patients seek treatment. None appear to be salt workers. Even organizers here acknowledge that there's a severe shortage of services for agarias.
7: आ प्रसंग पति या पची रणमा अगरियावनी आ लोको सेवा करे इमा अम्मे वांधो नथी, पण अमारी एक एवी रजूआत है कि जे जिंजुवाड़ा गामनी जे गाड़ी फाड़वेली है ए छेले 6 महीनाथी अमदावादमां रिपेरिंग पड़ी है अने एना कारणे अगरियानो जे सुविधा मळवी जोए मळती नथी.
0: As we leave, the van's driver Chintan pulls us aside.
6: मैं आया 17 साल हुआ, स्टाफ पूरा कभी भरा ही नहीं. आप देखते हो तो अंदर से रोना आता है कि ऐसे आदमी इतने हमारे देश के लिए, हमारे लिए इतना मीठा, जो खाने में सबसे ज्यादा क्या चीज चाहिए, मीठू. मीठा नहीं होगा तो खाने में मजा नहीं आएगी. वो हमारे लिए इतना करता है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं पाते, हमारे हाथ में नहीं है.
0: To find out how widespread this problem is, we travel about 100 kilometers to Gujarat's west coast, where thousands more workers harvest salt. At a health clinic in the region, we join Dr. Prajapati.
8: आपको वहाँ पे जाके outreach करना है, यूनिटी के साथ काम करना है, ठीक है? चलो.
0: Today, Dr. Prajapati's team is vaccinating children living in the salt pans. Their first patient is this 10-month-old baby.
9: बस, thank you.
8: तो ये केस में क्या, इनका 9 महीने तक यहाँ पे रहते हैं, तो हम जहाँ जब भी आते हैं तो इनको हम सर्विस भी दे पाते हैं, उनका हेल्थ एजुकेशन भी कर सकते हैं, और इनको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें बता सकते हैं.
0: At another settlement, they treat a man with a severe skin infection.

0: તાતર કેવાય છે અખરોજું કેવાય
1: બહુ ખંજોળ આવે તમને
0: ખંજોળ આવે ને આવું થાય
1: ક્યાં ગયા છે બે હાથમાં છે
0: હાથમાં
1: બધા
2: Doctors say prolonged exposure to salt can leave workers with chronic skin infections, cracks, burns and painful lesions.
1: હવે તમને દવા આપું તમે રેગ્યુલર કરજો એનાથી ફરક ના પડે તો એકવાર પીએચસી આવજો પીએચસી મીઠી રહો કાં તો પછી ચામડીના ડોક્ટરને એકવાર બતાવવું પડશે
2: Other common complaints include chronic pain deteriorating eyesight and reproductive health complications but the doctor says there's only so much he can do
1: wo hamare paas staff ki shortage hai nahi resources kam pad rahe wo thoda issue rehta hai ha almost har jagah pe issue hai
2: shortly after the storm we visit kishan's family again his son rudra is preparing for an important exam
3: आपका सबसे अच्छा वाला सब्जेक्ट विषय कौन सा है
4: गणित
3: जब आप रण में होते हो
4: हाँ।
3: पढ़ाई करने में मुश्किल होती है
4: हाँ यहाँ लाइट नहीं होती इसलिए दीवे से करना पड़ता है पर पवन लगता है तो दीवा भी उलझ जाता है इसलिए
2: वॉचिंग रुद्र स्टडी ब्रिंग्स बैक डिफिकल्ट मेमोरीज फॉर किशन
5: दुख बहुत होता है कि अगर आज मैं मेरे बाबा मेरे को पढ़ाते लिखाते तो मैं ये मेहनत नहीं करता और मेहनत करना हर इंसान को ज़रूरी होता है मेहनत करने से कोई वो नहीं है लेकिन जो पढ़ाए लिखे होते हैं उनको मेहनत तो करनी पड़ती है लेकिन कलम से होता है और ये मेहनत नहीं है ये मजदूरी है
4: पगला ना एमना तरफ बढ़िया
2: द नेक्स्ट मॉर्निंग रुद्र गेट्स रेडी फॉर स्कूल इट्स ओनली अ शॉर्ट वॉक अवे फ्रॉम द फैमिलीज हट
6: Bye.
2: This desert was declared a wildlife sanctuary in the 1970s to protect the endangered Indian wild ass. That makes it difficult to build permanent infrastructure here. So, the Gujarat government has set up about 24 bus schools for Agariya children.
7: ધોરણ 6 થી 8 નું હિન્દી નું પેપર છે. પ્રશ્નોના જવાબ સારી રીતે લખીશું.
2: But advocacy groups have repeatedly warned the schools suffer from teacher shortages.
4: वहाँ अलग अलग साहिब होते हैं जो 1 से 8 तोरों को बनाते हैं और वहाँ अच्छे से समझाया जाता है और दर्रे एक विषय में और यहाँ घड़िए और ऐसा आते विषय पे नहीं आते
2: There are no desert schools for older children.
7: महसूस होता है कि ये इस इन बच्चों में भी कुछ IQ पावर अच्छा होता है कुछ बच्चों में लेकिन उनको पूरी तरह से गाइडेंस न मिलने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते
2: Far from the bus schools and salt fields, some traders have built large fortunes from the salt harvested by the Agariyas.
8: The party har chap karta nahi ho jo party hamare ekdam chokha chao ji ek to udan hai asal.
9: Aur ye sab bag kahan ja rahe hain sir?
10: Ye UP mein, MP mein.
9: Ye sab aapka hai?
10: Sab yahan se ye diwal se wahan last tak mera hai. Kareeb 10,000 chaurus meter ki jagah hai.
2: Hingor Bhai is one of the biggest traders in the area. He pays advances to as many as 100 families each season. For him, the storm hasn't been entirely bad for business.
10: Namak ka production kam hota hai to demand zyada rehti hai. To aaj ke samay mein demand achhi hai. Pura area dher ban jayega. Kareeb 17-18 lakh ton namak yahan banta hai.
2: Last year, Hingor Bhai and other traders opened a processing plant to meet rising demand for packaged salt. Today, he's inspecting the production line with his factory manager.
11: ये इस तरीके से अपना 1-1 किलो पैकिंग होता है। इन 13 मशीनों में पर मिनट 60 पाउस की कैपेसिटी रहती है मैक्सिमम।
2: Most Agariyas never sell directly to the companies whose brands appear on supermarket shelves. Instead, their salt typically passes through middlemen.
11: Abhi to apne paas maan lo ek brand hai kabhi 10 brand ho to sabke ikke bhi aapke bhi dono milega.
2: Workers say they are often paid less than half a cent for each kilogram of salt they harvest by hand. Once packaged, the same salt can sell for up to 35 cents a kilogram. But when asked whether rising profits mean traders should pay Agarwal's more, Hingor Bhai says the responsibility lies elsewhere.
10: जो अगरिया कल्याणकारी योजना का फंड है वो सही ढंग से सरकारी मैनेज नहीं करती यदि सरकार मैनेज करती तो उनको शिक्षण का आरोग्य का उनके बच्चे के जो भी सुविधा है वो ज्यादा दे सकते
2: बैक इन द डेजर्ट फैमिलीज लाइक किशन्स आर स्टिल वेटिंग फॉर हेल्प
5: चलो अब आपड़े दाबे जाइए बरोबर यहाँ मीटिंग राखेली है सबसे मुश्किल जिंदगी आगरिया की है यहाँ गुजरात के अंदर लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है यही कुछ पता नहीं चलता हर बार ऐसा हर साल ऐसा होता है लेकिन आज तक सरकार कुछ करती नहीं है अब इस बार भी मीटिंग है अब मीटिंग में हम जा रहे हैं अब देखते हैं कि इस बार सरकार कुछ करती है या नहीं करती
12: आगरिया भयो केवा मनात करता मजूरी अने रण वचारे गुजारो करता ए आवो मेघ रे ए राजा नो थयो टांडो अरे रे कैक तो नू से अमारा यासू
2: The meeting has been organized by a group advocating for Agarwal rights. Harinesh Pandya and his team have travelled from Ahmedabad, Gujarat's largest city.
13: अगर दूसरे कोई traditional occupation में ऐसा disaster आता, तो इस हफ्ते एक हफ्ते के अंदर 15-20 लोगों ने suicide कर लिया होता। लेकिन इनका जो जिगर है, ये मुसीबतों को झेलने की जो ताकत इनकी है community की, अगर या community की, पूरे राण के अंदर देखें तो करीब 80 करोड़ के आसपास।
14: Huge loss
13: है। और अगर ठीक से पूरा अगर हमें लगता है हमारा हम जो देखते हैं तो लगता है कि 100-120 करोड़ के आसपास नुकसान
2: द ग्रुप इज कॉलिंग फॉर अ डिजास्टर रिलीफ पॉलिसी सिमिलर टू द कॉम्पेंसेशन स्कीम्स अवेलेबल टू इंडियन फार्मर्स अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर
13: एक बात चौकी स्पष्ट करी कि रेवेन्यू विभाग और गुजरात नो जे आ डिजास्टर मिटिगेशन नो जे विभाग छे होनारत सामे राहत करवानो हजी एकाद वर्ष मा जशे आखी प्रक्रिया मा
2: फ्यू सीनियर ऑफिशियल्स हैव कम टू द मीटिंग नन आर फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स रिस्पोंसिबल फॉर डिजास्टर रिलीफ
15: તમારા મહેનત થી મિત્રો તૈયાર થાય છે તમે જે મહેનત કરો છો બરોબર એમાં અમે સહભાગી થઈએ
2: એન્ડ ધોઝ હુ આર હિયર ઓફર નો કોન્ક્રીટ હેલ્પ
16: તમે જે મજૂરી કરો ને એ તમારા બાળક ના કરે એટલા માટે હવે તો મજૂરી કરીએ તો અમે એજ્યુકેશન જોશે
2: Kishan only gets the chance to speak hours later. By then, several officials have already left.
17: જે મારું એકનું જ નહીં પણ આખા રણની અંદર તમામ આગોરિયાના ઘર પરિવાર બધું જ રણપણ થઈ ગયું છાપરા ઉડી ગયા ટાંકીઓ ફૂટી ગઈ ક્રૂડના બેલર ઉડી ગયા સોલર પ્લાન્ટ તૂટી ગયો મારા મીઠા વારેલા પણ નથી મીઠા પાટાની અંદર જ છે
2: The scale of their losses is clear.
12: કે જો અમારી વેદના અરે રે કઈક તો લો સે અમારા આંસુ
18: નહીં દુખાઈ હોતા હે લેકિન મેને સબ કે લિયે આંસુ બહાયા સબકો દુખ હુઆ હે ઇતના
2: Multiple government authorities refused our requests for an interview. A junior official did not say if the salt workers would receive support. So, we're heading to Ahmedabad to meet the president of India's Salt Manufacturers Association. Bharat Rawal represents some of the country's biggest salt producers. Despite growing concerns over erratic weather, he says the industry's overall outlook remains strong.
19: During 2024-25, we achieved 49 million ton of production, which is more than US salt production.
2: Rawal dismisses the idea that the salt industry itself should do more to help workers.
19: हमारा तो business है और CSR activity हमारा है ये development का अगर यहाँ का ख्याल रखना जैसे gumboot देना goggles देना
20: फिर भी कोई पहने हुए बहुत कम
19: हैं वो मैं आता हूँ वो एक myth है कि अगर मैं जूते पहनूंगा तो मेरी स्पीड कम आएगी लेकिन इनकी तो जिम्मेदारी है सरकार की वो पल्लू झाड़ रहे हैं उनको पूछो
2: Rawal is also a member of Gujarat's Salt Empowered Committee.

0: Committee, a government body responsible for agrarian welfare, among other issues. He believes the government has neglected workers.
1: खाली फंडिंग से नहीं होता है ना, 40 करोड़ दे दिया लेकिन एक भी मीटिंग नहीं बुलाओ तो कैसा पैसा खर्च होगा? और अगर सीधे शब्दों में बोला जाए, आज के दिन में जो माई बाप बोलते हैं ना सरकार में, इस इंडस्ट्री का माई बाप ही नहीं रहा कोई।
0: Government records reviewed by 101 East show the committee has only met twice since 2020. The government's own auditors recommended regular reviews to ensure welfare schemes actually reach agrarian families. Back in the desert, Kishan's season has finally come to an end.
2: हम लोग इसको पूरा सामान जो है यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पानी भरा हुआ होता है। वो पानी इतना के 5-6 फुट पानी होता है।
0: For Kishan's family, returning to the village means clean water and electricity.
2: Rudra, नीचे एक एक वस्तु मुक्त हो रहा है, गमे थी एक वस्तु नीचे आई मुक्त हो रही। अब अजूरी नहीं, मैं एक मत भरा हुआ बस।
0: But Kishan must stay behind a little longer. He still has salt to load and must speak with his trader to see if a season's worth of work will earn him anything at all.
2: अबे मारो मिठू तो गए हो बरोबर, पर हम चिल्लू लागे तुमने के
3: सब फायदा करो पड़े न।
2: हाँ, चले हम तो हम चिल्लू माथे रहे हो।
3: गए साल तो अबे सुखा हो पड़े, चिल्लू मिठू था, गए साल का तो मिठू वो सुधा है। गए साल तो आपने 11,000 बोरी से रावक 8,000 बोरी था।
0: Most agrarian families won't know whether they've made a profit or a loss until traders settle accounts months later. Last season, Kishan earned about $350 in profit. This year, he expects to be left in debt.
4: और आपके हाथ में कितने पैसे आएंगे?
2: नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। अगर अगली साल में फिर से ये पाटा तो करना ही पड़ेगा, जब कर्जा उनका है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वो फिर अगली साल जो नमक बनेगा उनमें से कटेगा। अब हम लोग तो कोई भी आगरिया जो है उनको कुछ कह नहीं सकते सेठ को।
4: क्यों?
2: क्योंकि वो बोले कि मेरी वजह से जो नुकसान होता तो मैं कुछ करता, ये कुदरती आफत है।
0: Several months after the storm and despite a government survey of the damage, no support has been announced for workers like Kishan.
2: कोई हमारी बात समझता ही नहीं, हर चीज के बगैर चलता है लेकिन नमक के बगैर किसी को भी नहीं चलता है। बना रहे हैं हम लोग लेकिन हमारी कोई कदर ही नहीं है। कुत्ते की तरह हमारा जीवन होता है यहाँ, पेट भरने गन्ना बस, दूसरा कुछ नहीं।
0: India's salt industry generates more than $2 billion a year in revenue. Yet, the workers at the very bottom of the supply chain struggle to survive from one season to the next.
5: It's taken nearly a week of driving and crossing international borders for these people to reach Omdurman. They're part of a government-run voluntary return program. They've come back home to Sudan from Egypt, where they fled more than 3 years ago to escape the fighting.
6: The first thing I'll do is find my home and see what has become of it.
5: The army regained control of the city last year, prompting a wave of returns. But 2 years of fighting have left their mark. Getting here is the first step. Now, many have to figure out how to move on with their lives.
7: Is the U.S.-Israeli war on Iran dragging the world to an economic meltdown? Join me, Steve Clemens, every week where I'll bring you the latest analysis on the global fallout of this conflict. Pull apart fact from fiction and get to the bottom line.
8: Your weekly take on U.S. politics, The Bottom Line.
9: Sleeping pads, birch. You can cook in this. It's a radio, a multi-tool which everyone should carry.
10: From preppers to doomsday tourism and eco-anxiety therapy.
11: Why do they come here? Religion, politics, finance, war.
10: Apocalypse Maybe discovers how people are coping in the end times.
12: What has the poor young generation coming through got to live for?
9: I just feel like I told you so.
10: dealing with this feeling on Al Jazeera.